नाम ले जा रो तने ने दिखा ने से प्याये चौसिया मी यायो सूरा तुगरे शिवा छे आलवी तु या प्रमी पिखा तने अहो नाला ली जो मा जावी।